0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ lakzor mo lakzor changchang ra tan de tonjin de la kaneng chu ge da ge de tang ka ge ge che ten shu ra ser ke ten shu chi ra ani ge la kan de xin kur ge na ga den so xin ma tu shu chi ra sam ge la kan de ka ka ka ge zu sel ka ka ka ge na cha po shu ra da chang gu de chu lak se na ka sam gu de tang da da ser ke cha mun de zhen de mo shi
1: re da chi zu tonjin de nyon gu yin na ge no ne su chi xi sa se ge zhen mi nyu ge
0: dan de dong de ma ka u chu chong ngang nang khne da zhen yun de nyong ge mo ma ka ma ja nang ge da shen zhen jiang gu guang zhe jiang gu da shang hai ge de ne mei ne mei ge da de ge ne chang kang qian bu na ma dan de ge sham tong ge qian bu na ma ma ka mei cha ne nyu ge
1: ji ji da qi chun de zo ge ta zu ten yer keng na na ne chu mu ge
0: ne che bu ma zhe me ne den zhe zhe me mei da ta cha ma jin na la bu zo ra da zhe qi wa shang zhen na cha ma
1: जे जे ताचो इंजना यारमुंड ता सोंग सोंतम ते सुखतों दे योन्यो
0: योन्यो ता चंगला थमा पेचर थमा जना मदे ओनवा
1: अरे अंदे योना रंगे छि सोंजी टेटुरा न्यो सुंग थोने कोबना मुछ मुछ
0: तता शिग हागे तता वा कशिग कष्ट छि गाज ग थपर तो तुचो चंजना नानंगा तिना छपरस गनो तुचो वाकन दिना गनो अंदे न्यामजे सना मंगमो नानो जना वरा थेकर त छों जेप तंग ता थेकर त रंगे यो गे गोलमो जित ना ता त मार तो छेपो मे ता चंग द गोलम गेवरा न्योरा हान छे ता न्यामजे ना ता ता खसो छों जना थोंजे दुको ता ता ते ना खचो गे छि निग चालम ना छुक का कंदंग कंद ला कने छि न्यामजे से ना मंगिया
1: जे जे ते छि गे यो करे ते ना छु रंग से वलग सर्कल थामो गे थोंजे दे ता छों जना ता नानो जो जों दले केपो छमो ना
0: nana da kepuchi da nana da tong chari ge chong jap chig da gona ra chige chuk da da du chige chong jina da goma na da da chige la ran do chig go da nyamje na ga wa ken chen na na no na mang ge da nyamje sa na mang ga
1: je je da chong ji chug ra tian chig nyamde la chog la ken yang ni wa de chi pu san da se go ka
0: a ra ra ra ha da mo se
1: जे तिना त ओलिक सर्किट हमन द चोरंगे अनिरगोनु कोरम गुठने छि साचा जमाना द येन यो
0: साचा जमाना मंगन मैक मोता मालु द चांजा मार्तुक मेना मैक ता यो गुतना रंगे हरा के छापचा छुतुर मोता गान दे जमचे छ न ओलिक सर्किट हमन द जनजमांग आर मोते तना ता रंगे छि साने जमाने रा छि मावा न छि लोमा के नंबर छै तमु छि छापचा के नंबर साने जमाने रा तमु छर्जियो
1: जे वदिक सर्कल थामु ग सोजिन लखि जिनजे बायनर
0: येनर येनर न
1: जोंर बागेनरला
0: खरम बारा गिन दग दग केनजना कगे जिनजन गलाकने ताव जे लोमा ग जिनजे जे छमजन ग जिनजरा गितंग छमजे ग जिनजे ता मा जोंजने मरब सबा तमुजरे
1: ओ जे जे चेक नेरवने नेरवता सर्कल थामु द लखि ग लिकन द लिर ओनर
0: अरे मरब ता संबार ता वंचे वरा ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱪᱮᱠ ᱠᱮᱱᱨᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱪᱮᱠ ᱥᱩᱠᱛᱚ ᱢᱚ ᱛᱟᱪᱟᱝ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱪᱤ ᱥᱟᱨᱠ ᱛᱟᱢᱩ ᱡᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱧᱟᱱᱟ ᱢᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱟᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱠᱩᱱᱚ ᱱᱟᱵᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱮ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱷᱤᱱᱤᱨ ᱠᱷᱤᱝ ᱛᱟᱵᱨ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱞᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱜ ᱱᱮᱥᱮ ᱥᱩᱢᱩ ᱡᱟ
0: ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱜ ᱜᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱞᱤ ᱜᱮ ᱱᱮᱥᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱥᱩᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱡᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱪᱤ ᱠᱟᱜ ᱢᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱨᱟᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱵᱨ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱩᱝ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱝᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱠᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱩᱥᱠᱟ ᱪᱤ ᱢᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱵᱨ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱫᱤᱜᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱱᱪᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱟᱞᱚᱢ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱪᱚᱝᱪᱚᱜ ᱪᱚᱜ ᱥᱮᱨᱡᱚ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱣᱩᱢ ᱯᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱚᱞᱤᱠ ᱥᱟᱨᱠᱞ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱪᱟᱯᱡᱟ ᱪᱮᱥᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱠᱷᱩᱛᱩ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱢᱩ ᱛᱟᱞᱢ ᱛᱷᱟᱛᱚᱢ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱫᱩᱠ ᱥᱟᱢ
0: ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱪᱟᱪᱩ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟᱞᱢ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱜ ᱡᱟᱨᱡᱤᱜ ᱨᱟᱢᱚ ᱛᱟᱣ ᱪᱤᱨᱜ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱱᱤᱜ ᱛᱟᱞᱢ ᱛᱮ ᱥᱤᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱟᱯᱡᱟ ᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨᱪᱩᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱪᱟᱯᱡᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱥᱟᱵᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱠᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱩᱪᱩ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱜ

ताला सिस्तो दान जो तावा कहरी यंग मद गंथे नान जो तावर थंग छनरी द थंग छुंग जा दान जो ता थंग छोंग छुंगरी यंग दिन बमर द गान जो ता तो कहरी यंग खब जिन जो गान जो ता सा दे छनरी यंग दे छुंग जा दान जो ता दी छोंग छुंगरी छोरो गान जो ता छगन्या द मिरी 영원히 끊어줘